0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
5: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
4: चिकन पॉक्स याद है, ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है, कभी सोचा भी नहीं था। बॉडी पे ब्लिस्टर्स और इतना शार्प पेन, महीनों तक जिंदगी बिल्कुल मुश्किल बन गई थी।
5: काश मुझे शिंगल्स के बारे में पता होता।
4: याद रखे, तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें।
6: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें। खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो। ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है। मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें।

0: to your song.
1: Only on City FM 89. It's 8 a.m.
2: City FM 89.
3: Trending today.
4: Billie Eilish has shared an update on her fourth album. According to the pop star, the work on the album is halfway done. Billie announced the project last year after the success of 2024's Hit Me Hard and Soft.
1: City FM 89.
5: This show is brought to you by Jazz.
6: City FM 89.
7: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी. आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया.
8: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ 500 रुपए में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ. अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
9: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस. जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
10: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
9: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक.
10: जो तुम चाहो.
9: डाउनलोड दी ऐप नाउ.
8: मुबारक हो, यूफोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़. तो यूफोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यूफोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
11: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर.
8: मुबारक हो, यूफोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़. तो यूफोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यूफोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
0: सिटी एफएम 89.
1: We are playing your song.
12: Dawn Media proudly announces the second Breathe Pakistan International Climate Change Conference, happening on the 6th and 7th of May 2026 at the Sheesh Mahal Hall, Serena Hotel, Islamabad.
13: 2 days packed with dialogue, ideas and action. We'll revisit what's changed and what hasn't, and where Pakistan is headed in the fight against climate change. Visit dawn.com/breathepakistan or email breathepakistan@dawn.com to be a part of the change.
14: Breathe Pakistan,
15: a Dawn Media initiative.
14: Let's weather the change
15: together.
16: Principal partners: United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC, and CVF V20. Supporting partners: Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Syngenta Biologicals, Mizan Bank Limited, DHL Express, Asian Development Bank, Cambridge, Coca-Cola Pakistan, and Bank of Punjab. Knowledge Partners: Pakistan Business Council, Climate Finance Pakistan, Hisar Foundation, and Pakistan Agricultural Coalition. Research Partners: Ipsos and Repu Media Intelligence. Hospitality Partner: Serena Hotels. Airline Partner: AirBlue. Connectivity Partner: Zong 5G. Tea Partner: Vital Tea. Coffee Partner: Cinnabon.
17: Event Partner: Jump Activations.
1: City FM 89.
18: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: अपने कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेट दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर, अभी सिर्फ ₹500 में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ, अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार। जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें।
2: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस, जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
3: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
2: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक,
3: जो तुम चाहो।
2: डाउनलोड द ऐप नाउ।
1: मुबारक हो, यूफोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़। तो यूफोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यूफोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर।
4: Dawn Media proudly announces the second Breathe Pakistan International Climate Change Conference, happening on the 6th and 7th of May 2026 at the Sheesh Mahal Hall, Serena Hotel, Islamabad.
5: 2 days packed with dialogue, ideas and action. We'll revisit what's changed and what hasn't, and where Pakistan is headed in the fight against climate change. Visit dawn.com/breathepakistan or email breathepakistan@dawn.com to be a part of the change.
6: Breathe Pakistan,
7: a Dawn Media initiative.
6: Let's weather the change
7: together.
8: Principal partners: United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC, and CVF V20. Supporting partners: Federal Ministry of Planning, Development and Special

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: City FM 89. Trending today.
3: Billie Eilish has shared an update on her fourth album. According to the pop star, the work on the album is halfway done. Billie announced the project last year after the success of 2024's Hit Me Hard and Soft.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी, आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया।
6: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर, अभी सिर्फ ₹500 में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ, अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार। जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें।
7: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस, जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
8: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
7: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक,
8: जो तुम चाहो।
7: डाउनलोड द ऐप नाउ।
9: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर।
6: मुबारक हो, यूफोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़। तो यूफोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यूफोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर।
0: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग।
10: Dawn Media proudly announces the second Breathe Pakistan International Climate Change Conference, happening on the 6th and 7th of May 2026 at the Sheesh Mahal Hall, Serena Hotel, Islamabad.
11: 2 days packed with dialogue, ideas and action. We'll revisit what's changed and what hasn't, and where Pakistan is headed in the fight against climate change. Visit dawn.com/breathepakistan or email breathepakistan@dawn.com to be a part of the change.
12: Breathe Pakistan,
13: a Dawn Media initiative.
12: Let's weather the change
13: together.
14: Principal partners: United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC, and CVF V20. Supporting partners: Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Syngenta Biologicals, Mizan Bank Limited, DHL Express, Asian Development Bank, Cambridge, Coca-Cola Pakistan, and Bank of Punjab. Knowledge Partners: Pakistan Business Council, Climate Finance Pakistan, Hisar Foundation and Pakistan Agricultural Coalition. Research Partners: Ipsos and Repu Media Intelligence. Hospitality Partner: Serena Hotels. Airline Partner: AirBlue. Connectivity Partner: Zong 5G. Tea Partner: Vital Tea. Coffee Partner: Cinnabon.
15: Event Partner: Jump Activations.
4: City FM 89.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
3: City FM 89. We're playing your song.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM 89.
6: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
7: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
8: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ 500 रुपए में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ. अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.

0: Welcome back, everyone. You were just listening to Funny Friends by A$AP Rocky. And that's all for today. Hope your Tuesday stays bright and smooth. Don't forget to follow us at CityFM89 on Instagram, YouTube, and TikTok. Or tune in on the app, which you can download from either the Play or the App Store. You can also listen in on our website, cityfm89.com. Catch you tomorrow, bright and early. Bye.
1: Perfect antidote to your road rage.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
4: Chicken pox, yaad hai? Ye shingles banke wapas aa sakta hai. Kabhi socha bhi nahi tha. Body pe blisters aur itna sharp pain. Mahino tak zindagi bilkul mushkil ban gayi thi.
5: काश मुझे शिंगल्स के बारे में पता होता।
4: याद रखे, तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडरएस्टिमेट ना करें।
5: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें। खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो। ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है। मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें।
6: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर। अभी सिर्फ ₹500 में ऑफर लगाओ। 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ। अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार। जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें।
7: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल। क्योंकि डे हो या नाइट, मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
6: मुबारक हो, यूफोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़। तो यूफोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यूफोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर।
1: You are listening to City FM 89.
2: We are playing your song.
8: Due to unavoidable circumstances, the venue for Breathe Pakistan International Climate Change Conference 2026 has been changed. The conference, originally scheduled to be held at the Jinnah Convention Center on May 6th and 7th, 2026, will now take place on the same dates, May 6th and 7th, 2026, at the Sheesh Mahal Hall, Serena Hotel, Islamabad. The organizers regret any inconvenience caused and appreciate your understanding and continued interest. See you all in Islamabad.
9: Breathe Pakistan.
10: A Dawn Media Initiative.
9: Let's weather the change
10: together.
8: Principal Partners, United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC, and CVF V20. Supporting Partners, Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Syngenta Biologicals, Mizan Bank Limited, DHL Express, Asian Development Bank, Cambridge, Coca-Cola Pakistan, and Bank of Punjab. Knowledge Partners, Pakistan Business Council, Climate Finance Pakistan, Hisar Foundation, and Pakistan Agricultural Coalition. Research Partners, Ipsos and Repu Media Intelligence. Hospitality Partner, Serena Hotels. Airline Partner, AirBlue. Connectivity Partner, Zong 5G. Tea Partner, Vital Tea. Coffee Partner, Cinnabon.
11: Event Partner, Jump Activations.
12: City FM 89, we're playing the song.
13: When I grow up, I want to be strong.
14: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
13: I want to learn big things.
14: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
13: I want to be the fastest.
14: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
13: I want to grow up like everyone else.
14: Because every child deserves a chance to grow, learn, and thrive. Act now for the foundations of our nation.
8: Nurture today, strengthen tomorrow.
14: Act, a Dawn Media Initiative.
2: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: City FM 89.
1: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ ₹500 में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ. पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें. मुबारक हो, यू फोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़. तो यू फोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यू फोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
0: वी आर
2: सिटी एफएम 89.
3: माइसीलियम, द अंडरग्राउंड सेवरल माइल्स लॉन्ग नेटवर्क्स ऑफ फंगल थ्रेड्स विद इन अ फॉरेस्ट दैट कनेक्ट एंड नरिश ऑल ट्रीज एंड अलाउ न्यूट्रिएंट शेयरिंग बिटवीन ट्रीज व्हेन अ डिजास्टर स्ट्राइक्स द फॉरेस्ट.
4: माइसीलियम इज नेचर्स अनसंग हीरो. We need to emulate the power of mycelium to generate the healing power of mycelium.
3: We need to unite to protect the victims of climate change.
4: Your life truly depends on one network, and clearly, that's the one that lies beneath your feet.
3: Emulating mycelium's network effect is Pakistan's first line of defense against catastrophic climate change.
4: Join the worldwide movement against climate change.
5: Breathe Pakistan.
6: A Dawn Media Initiative.
5: Let's weather the change
6: together.
7: Principal Partners: United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC, and CVF V20. Supporting Partners: Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Syngenta Biologicals, Mizan Bank Limited, DHL Express, Asian Development Bank, Cambridge, Coca-Cola Pakistan, and Bank of Punjab. Knowledge Partners, Pakistan Business Council, Climate Finance Pakistan, Hisar Foundation, and Pakistan Agricultural Coalition. Research Partners, Ipsos and Repu Media Intelligence. Hospitality Partner, Serena Hotels. Airline Partner, AirBlue. Connectivity Partner, Zong 5G. Tea Partner, Vital Tea. Coffee Partner, Cinnabon.
0: City
8: FM
0: 89.
9: Have you ever dreamt of snorkeling in the Great Barrier Reef? Rising seas are bleaching coral and threatening wildlife. And that dream could vanish if climate change keeps getting worse.
5: Breathe Pakistan.
6: A Dawn Media Initiative.
5: Let's weather the change
6: together.
0: City FM 89, we're playing the song.
4: You're listening to
10: Non-Stop Hits.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 p.m.
3: City FM 89.
4: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ 500 रुपए में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ, अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
5: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस. जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
6: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
5: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक.
6: जो तुम चाहो,
5: डाउनलोड दी ऐप नाउ.
7: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर.
4: मुबारक हो, यूफोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़. तो यूफोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यूफोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
0: City FM 89, we're playing your song.
8: Dawn Media proudly announces the second Breathe Pakistan International Climate Change Conference, happening on the 6th and 7th of May 2026 at the Sheesh Mahal Hall, Serena Hotel, Islamabad.
9: 2 days packed with dialogue, ideas and action. We'll revisit what's changed and what hasn't, and where Pakistan is headed in the fight against climate change. Visit dawn.com/breathepakistan or email breathepakistan@dawn.com to be a part of the change.
10: Breathe Pakistan,
11: a Dawn Media initiative.
10: Let's weather the change
11: together.
8: Principal partners: United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC, and CVF V20. Supporting partners: Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Syngenta Biologicals, Mizan Bank Limited, DHL Express, Asian Development Bank, Cambridge.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ ₹500 में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ, अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
2: You're listening to City FM 89.
1: मुबारक हो, यूफोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़. तो यूफोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यूफोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
3: सिटी एफएम 89.
4: माइसीलियम, द अंडरग्राउंड सेवरल माइल्स लॉन्ग नेटवर्क्स ऑफ फंगल थ्रेड्स विद इन अ फॉरेस्ट दैट कनेक्ट एंड नरिश ऑल ट्रीज एंड अलाउ न्यूट्रिएंट शेयरिंग बिटवीन ट्रीज व्हेन अ डिजास्टर स्ट्राइक्स द फॉरेस्ट.
5: माइसीलियम इज नेचर्स अनसंग हीरो. वी नीड टू एम्युलेट द पावर ऑफ माइसीलियम to generate the healing power of mycelium.
4: We need to unite to protect the victims of climate change.
5: Your life truly depends on one network, and clearly, that's the one that lies beneath your feet.
4: Emulating mycelium's network effect is Pakistan's first line of defense against catastrophic climate change.
5: Join the worldwide movement against climate change.
6: Breathe Pakistan.
7: A Dawn Media initiative.
6: Let's weather the change
7: together.
8: Principal Partners, United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC, and CVF V20. Supporting Partners, Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Syngenta Biologicals, Mizan Bank Limited, DHL Express, Asian Development Bank, Cambridge, Coca-Cola Pakistan, and Bank of Punjab. Knowledge Partners, Pakistan Business Council, Climate Finance Pakistan, Hisar Foundation, and Pakistan Agricultural Coalition. Research Partners, Ipsos and Repu Media Intelligence. Hospitality Partner, Serena Hotels. Airline Partner, AirBlue. Connectivity Partner, Zong 5G. Tea Partner, Vital Tea. Coffee Partner, Cinnabon.
9: City FM 89.
10: Aren't beaches just so relaxing? Rising seas are flooding coasts and forcing communities to leave homes they've lived in for generations. Climate change is closer than you think.
6: Breathe Pakistan.
7: A Dawn Media initiative.
6: Let's weather the change
7: together.
3: City FM 89.
5: You're listening to
11: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 5:30 PM.
0: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: City FM
0: 89.
6: Chicken pox yaad hai? Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
7: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.

0: City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ ₹500 में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ. अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
3: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर.
4: टेलीनॉर की वीकली एक्सट्रीम प्लस ऑफर लगाओ, ₹550 में 60 GB डेटा, 15,000 टेलीनॉर और 300 दूसरे नेटवर्क मिनट्स पाओ. अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा हफ्ता बेफिक्री से अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग और सोशलाइजिंग करते जाओ, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
5: फॉलो सिटी एफएम 89 ऑन यूट्यूब टू गेट योर डिजिटल कंटेंट फिक्स. पॉडकास्ट, रिव्यूज, इंटरव्यूज एंड सो मच मोर. नॉनस्टॉप कंटेंट फॉर यू.
6: अवेल फ्लैट 30% ऑफ एट द डाइनर्स ग्रेट फेस्टिव सेलिब्रेशन. हरी अप एंड विजिट स्टोर नाउ और शॉप ऑनलाइन एट diners.com.pk. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
7: मुबारक हो, यू फोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 crore. तो यू फोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यू फोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
8: सिटी एफएम 89.
9: Due to unavoidable circumstances, the venue for Breathe Pakistan International Climate Change Conference 2026 has been changed. The conference, originally scheduled to be held at the Jinnah Convention Center on May 6th and 7th, 2026. Will now take place on the same dates, May 6th and 7th, 2026, at the Sheesh Mahal Hall, Serena Hotel, Islamabad. The organizers regret any inconvenience caused and appreciate your understanding and continued interest. See you all in Islamabad.
10: Breathe Pakistan.
11: A Dawn Media Initiative.
10: Let's weather the change
11: together.
9: Principal Partners, United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC and CVF V20. Supporting Partners, Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Syngenta Biologicals, Mizan Bank Limited, DHL Express, Asian Development Bank, Cambridge, Coca-Cola Pakistan and Bank of Punjab. Knowledge Partners, Pakistan Business Council, Climate Finance Pakistan, Hisar Foundation and Pakistan Agricultural Coalition. Research Partners, Ipsos and Repu Media Intelligence. Hospitality Partner, Serena Hotels. Airline Partner, AirBlue. Connectivity Partner, Zong 5G. Tea Partner, Vital Tea. Coffee Partner, Cinnabon.
12: Event Partner, Jump Activations.
2: City FM 89.
13: Can you imagine turning on the tap and getting no water? South Asia is one of the world's most water-stressed regions. Millions of children in Pakistan, India, and Afghanistan are losing access to safe water as floods, droughts, and storms intensify with climate change.
10: Breathe Pakistan.
11: A Dawn Media Initiative.
10: Let's weather the change
11: together.
2: City FM 89.
13: You're listening to
14: Rush Hour with Wes.
15: You're the biggest star in the world tonight. How does it feel?
16: Honestly, I don't really feel anything at all.

0: Perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
5: Trending today.
6: Billie Eilish has shared an update on her fourth album. According to the pop star, the work on the album is halfway done. Billie announced the project last year after the success of 2024's Hit Me Hard and Soft.
7: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89.
8: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडरएस्टिमेट ना करें.
9: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
10: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी. आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से, जैसे बिल्कुल नया.
11: رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک, یہاں ملیں گے ریئل سولوشنز. جیسے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں,
12: فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ, آلویز آن کسٹمر سپورٹ کے ساتھ,
11: کیونکہ رقمی ہے 100% اسلامک.
12: جو تم چاہو,
11: ڈاؤن لوڈ دی ایپ ناؤ.
13: Have you saved our WhatsApp number yet?
14: 0314289898989.
15: Get in touch over WhatsApp.
16: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ 500 रुपए में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ, अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
17: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर.
18: Avail flat 30% off at the Diners Great Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
16: Mubarak ho! Ufone and Telenor ki calling families milkar ho gayi hain more than 7 crore. To Ufone se Telenor and Telenor se Ufone karo latata calls kisi bhi package pe aur raho connected more than ever before.
19: City FM 89.
15: Dawn Media proudly announces the second Breathe Pakistan International Climate Change Conference, happening on the 6th and 7th of May 2026 at the Sheesh Mahal Hall, Serena Hotel, Islamabad.
5: 2 days packed with dialogue, ideas and action. We'll revisit what's changed and what hasn't, and where Pakistan is headed in the fight against climate change. Visit dawn.com/breathepakistan or email breathepakistan@dawn.com to be a part of the change.
2: Breathe Pakistan,
3: a Dawn Media initiative.
2: Let's weather the change
3: together.
9: Principal partners: United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC and CVF V20. Supporting partners: Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Syngenta Biologicals, Mizan Bank Limited, DHL Express, Asian Development Bank, Cambridge, Coca-Cola Pakistan and Bank of Punjab. Knowledge Partners: Pakistan Business Council, Climate Finance Pakistan, Hisar Foundation and Pakistan Agricultural Coalition. Research Partners: Ipsos and Repu Media Intelligence. Hospitality Partner: Serena Hotels. Airline Partner: AirBlue. Connectivity Partner: Zong 5G. Tea Partner: Vital Tea. Coffee Partner: Cinnabon.
8: Event Partner: Jump Activations.
1: City
7: FM
1: 89.
5: You're listening to
16: Rush Hour with Wes.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 p.m.
1: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
1: City
4: FM
1: 89.
4: Chicken pox yaad hai? Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
5: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
6: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ 500 रुपए में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ. अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.

0: तेरा आराम AGS ट्यूबुलर बैटरी दिल को है आराम
1: Have you saved our WhatsApp number yet?
2: 03142-898989.
1: Get in touch over WhatsApp.
3: ड्यूलक्स दे रहा है पेंट की 12 साल तक की वारंटी आपका घर रहे महफूज पेंट की हर झंझट से जैसे बिल्कुल नया
4: टेलीनॉर की वीकली एक्सट्रीम प्लस ऑफर लगाओ 550 रुपए में 60 जीबी डेटा 15,000 टेलीनॉर और 300 दूसरे नेटवर्क मिनट्स पाओ अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा हफ्ता बेफिक्री से अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग और सोशलाइजिंग करते जाओ क्योंकि टेलीनॉर है ना यार Woohoo! जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें। पीट
5: अ फेल फ्लैट 30% ऑफ एट द डाइनर्स ग्रेट फेस्टिव सेलिब्रेशन हरी अप एंड विजिट स्टोर नाउ और शॉप ऑनलाइन एट diners.com.pk टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
6: मुबारक हो यू फोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़ तो यू फोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यू फोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर
7: Dawn Media proudly announces the second Breathe Pakistan International Climate Change Conference, happening on the 6th and 7th of May 2026 at the Sheesh Mahal Hall, Serena Hotel, Islamabad.
8: 2 days packed with dialogue, ideas and action. We'll revisit what's changed and what hasn't, and where Pakistan is headed in the fight against climate change. Visit dawn.com/breathepakistan or email breathepakistan@dawn.com to be a part of the change.
9: Breathe Pakistan,
10: a Dawn Media initiative.
9: Let's weather the change
10: together.
7: Principal partners, United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC and CVF V20. Supporting partners, Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Syngenta Biologicals, Mizan Bank Limited, DHL Express, Asian Development Bank, Cambridge, Coca-Cola Pakistan and Bank of Punjab. Knowledge Partners, Pakistan Business Council, Climate Finance Pakistan, Hisar Foundation and Pakistan Agricultural Coalition. Research Partners, Ipsos and Repu Media Intelligence. Hospitality Partner, Serena Hotels. Airline Partner, AirBlue. Connectivity Partner, Zong 5G. Tea Partner, Vital Tea. Coffee Partner, Cinnabon.
11: Event Partner, Jump Activations.
12: City FM 89.
8: You're listening to
13: Rush Hour with Wes.

0: antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: टेलीनॉर लाया मंथली कॉल प्रीमियम ऑफर. अभी सिर्फ ₹500 में ऑफर लगाओ, 3000 तमाम नेटवर्क मिनट्स पाओ, अब पहले से बेहतर कनेक्शन और सर्विसेज के साथ पूरा महीना खुल के करो बात, क्योंकि टेलीनॉर है ना यार. जाली नामी स्कीम और माली फ्रॉड के पैगाम मिलने की सूरत में अपने मोबाइल ऑपरेटर की हेल्पलाइन पर रुजू करें.
5: Have you ever dreamt of snorkeling in the Great Barrier Reef? Rising seas are bleaching coral and threatening wildlife. And that dream could vanish if climate change keeps getting worse.
6: Breathe Pakistan.
7: A Dawn Media Initiative.
6: Let's weather the change
7: together.
4: Mubarak ho! Youfone and Telenor ki calling families milkar ho gayi hain more than 7 crore. तो यू फोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यू फोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
8: अवेल फ्लैट 30% ऑफ एट द डाइनर्स ग्रेट फेस्टिव सेलिब्रेशन. हरी अप एंड विजिट स्टोर नाउ और शॉप ऑनलाइन एट diners.com.pk. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
4: मुबारक हो. यू फोन एंड टेलीनॉर की कॉलिंग फैमिलीज मिलकर हो गई हैं मोर देन 7 करोड़. तो यू फोन से टेलीनॉर एंड टेलीनॉर से यू फोन करो लातादात कॉल्स किसी भी पैकेज पे और रहो कनेक्टेड मोर देन एवर बिफोर.
9: Our TikTok will have you scrolling for days.
10: Follow us at City FM 89 on TikTok.
11: City FM 89. We're playing your song.
12: Due to unavoidable circumstances, the venue for Breathe Pakistan International Climate Change Conference 2026 has been changed. The conference, originally scheduled to be held at the Jinnah Convention Center on May 6th and 7th, 2026, will now take place on the same dates, May 6th and 7th, 2026, at the Sheesh Mahal Hall, Serena Hotel, Islamabad. The organizers regret any inconvenience caused and appreciate your understanding and continued interest. See you all in Islamabad.
6: Breathe Pakistan.
7: A Dawn Media Initiative.
6: Let's weather the change
7: together.
13: Principal Partners, United Nations Pakistan, Government of Khyber Pakhtunkhwa, English Biscuit Manufacturers, Capital Smart Motors, OGDC, and CVF V20. Supporting Partners, Federal Ministry of Planning, Development and Special Initiatives, Syngenta Biologicals, Mizan Bank Limited, DHL Express, Asian Development Bank, Cambridge, Coca-Cola Pakistan, and Bank of Punjab. Knowledge Partners, Pakistan Business Council, Climate Finance Pakistan, Hisar Foundation, and Pakistan Agricultural Coalition. Research Partners, Ipsos and Repu Media Intelligence. Hospitality Partner, Serena Hotels. Airline Partner, AirBlue. Connectivity Partner, Zong 5G. Tea Partner, Vital Tea. Coffee Partner, Cinnabon.
14: Event Partner, Jump Activations.
11: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to
2: Rush Hour with Wes.